0: भगवान की जय। श्री माधव आनंद होली गुरु जी श्री सत्ता गुरुदेव श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।

श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति

आत्मा दर ध्यान सोहम मुनि मोहन सुख रूप से जा ध्यात्मा प्रभु सुख गुरु दीप हो पर नाम सायर

0: ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महाशयानंद स्वामी जी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You here?
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

परम सुकरम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुतम् नमाम्यम् ओम दीपज्योति परब्रह्म दीपम् सर्वे मोहनम् दीपन सजते सर्वं संध्या दीपं सर्व सत्यम्।

श्री दीप नारायण भगवान श्री देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन।

नारायण भगवान की जय, देवेश्वर महादेव की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय, परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। अभी तक आप सब ने भगवान श्री माधवानंद पुरी जी महाराज के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, उनके जो जो कार्य किए गए हैं विश्व में उनके बारे में, और बाकी हिंदू धर्म और अपने भारतवर्ष की बारे में बहुत ज्ञानवर्धन हो चुका है। मैं आपके सामने सिर्फ 2 से 3 मिनट लूँगा ये बताने के लिए कि मैंने क्या देखा है। मैं आप सबसे पूछूंगा, क्या आपने भगवान को देखा है? किसी ने भगवान को देखा है तो खड़े हो जाइए। किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप मानोगे नहीं, मैंने भगवान को देखा है। भगवान को देहधारी भगवान को देखा है। भगवान श्री माधवानंद पुरी जी महाराज भगवान के रूप में उन्होंने देह धारण की थी। मैं पिछले 30-35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। माधवानंद पुरी जी महाराज मेरे आद्य गुरुदेव, और जो कुछ मैंने देखा, सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे भगवान को देखा। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने भगवान के सानिध्य में उनके चरणों की पूजा की, और कई कई महीनों तक उनके साथ में मेरे को रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दो वाक्य में बताऊंगा कि आपको मैंने कैसे कह दिया कि वो भगवान का ही रूप थे। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हुई हुई थी, श्रीनगर के अंदर, और उस समय मेरे आद्य गुरुदेव श्री माधवानंद पुरी जी महाराज वहीं विराज रहे थे मेरे पास में। आपको आश्चर्य होगा कि एक दिन मेरे को कहते हैं, कर्नल साहब, आज आपके उधर कुछ गोली चलने वाली है, जाकर के संभालो। आप मानोगे नहीं, मैं एकदम मेरे यूनिफॉर्म पहना, ड्रेस पहना, गाड़ी मंगाई, गाड़ी लेके मैं रवाना हुआ, तब तक वहाँ गोली चल चुकी थी।

यानी कितना ज्ञान था। दूसरा वाक्य मैं बताता हूं। एक बार मेरे को भुज जाना था मेरे परिवार के साथ में, तो उस दिन वो जो रात्रि थी वो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, मैं शाम को उदयपुर से चला, मेरा परिवार मेरे साथ में था, मेरे को जाना था और मेरे घर से मेरे मिसेज को वापस उदयपुर दूसरे दिन सवेरे जाना था। जैसे ही देसूरी के नाल में मेरी गाड़ी आई, गाड़ी में कुछ इंजन में बहुत आवाज़ आने लग गई और गाड़ी पीछे से धुआं ऐसे दे रही थी जैसे कि कोई जेट इंजन चल रहा है। बड़ी मुश्किल से रात को मैं 10:30 बजे निपल पहुंचा, गाड़ी गेट से बाहर खड़ी रही। गुरुदेव के आदि चरणों में मैंने नमन किया और बैठ गया। कुछ समय बाद में जब गुरुदेव ने पूछा कि कर्नल साहब क्या प्रोग्राम है, मोबाब जी मेरे को भुज जाना है, गुजरात में मेरी ड्यूटी वहाँ है और मैं कल सवेरे जाऊंगा और कल सवेरे ये मेरे घर से आए हैं आपके भाई साहब, ये वापस उदयपुर जाएंगे। नहीं, बहुत गलत है, अभी नहीं, अभी कभी वापस उदयपुर जाओ, आपकी गाड़ी को उदयपुर में रख देना और आप बस से जाना। जो हुक्म बाप जी, मेरी हिम्मत नहीं हुई पूछने की, बाप जी गाड़ी मेरी इतनी ख़राब है, मैं तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ, अब मैं वापस ये देसूरी की नाल में पहाड़ के ऊपर चढ़ेगी कैसे। बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हुई, गुरुदेव का वाक्य था, उसको सर माथे चढ़ाया और जाके गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करी, मेरा बेटा जो 10वीं क्लास में था उसमें, उससे पूछा गाड़ी के पीछे जाके देखो धुआं कितना निकल रहा है, कोई धुआं नहीं। गाड़ी के इंजन में आवाज़, कोई इंजन आवाज़ नहीं। फर्स्ट क्लास गाड़ी, मैं बात बता रहा हूँ आपको 1994 की, बहुत पहले की गाड़ी, बहुत फर्स्ट क्लास चढ़ी, पहाड़ों में चढ़ती गई और जाकर के मैं उदयपुर पहुंच गया, कुछ नहीं हुआ गाड़ी को, लेकिन गाड़ी मैंने वहीं रखी और दूसरे दिन सवेरे रवाना हो गया। आप देखिए कितनी शक्ति है। उनको पता लगता था क्योंकि वो भगवान थे। एक वाक्य और बताता हूं, जो कि जब उन्होंने अपनी देह को महासमाधि ले ली उसके बाद का बताता हूँ। मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस है स्पिरिचुअल, लेकिन मैं आपको एक वो बताता हूँ कि जब गुरुदेव ने महासमाधि ले ली उसके बाद में क्या हुआ। एक जैसे आप स्कूल के बच्चे यहाँ विराजमान हैं, वैसे ही हमारा भी एक छोटा सा स्कूल चलता है जो कि गुरुदेव का ही स्कूल है, उदयपुर में चलता है। बीच में खाने का ब्रेक हुआ था तो बच्चे आपस में बदमाशी कुछ कर रहे थे और एक बच्चे ऐसे बैठा था, पैर सर नीचे किया तो उसके आंख में एक पेंसिल घुस गई। मैं उसमें वहीं था, डॉक्टर के पास में ले गए, डॉक्टर ने बोला साहब आंख गई, जो पेंसिल घुस गई तो आंख गई। दूसरे अच्छे डॉक्टर के पास ले गए, उसने भी बोला आंख गई। उसके माता पिता बच्चे के आए, अहमदाबाद ले गए, अहमदाबाद में बोला साहब आँख तो गई है लेकिन इन्फेक्शन नहीं हो जाए इसलिए हम पट्टी बांध देते हैं। हुआ ये कि जब ये सब कुछ हो गया था, स्कूल का नाम आ रहा था, स्कूल के प्रिंसिपल और जो अभी माताजी विराजमान है निपल के अंदर वो, और मेरे घर से सीधे निपल आए, गुरुदेव के चरणों में नमन किया और कहा गुरुदेव आप ही बचा सकते हैं। आप मानोगे नहीं, उन्होंने जो पट्टी की थी बोले 15 दिन बाद में खुलेगी, 15 दिन बाद में वापस जब वो गए पट्टी खुलवाने के लिए तो बोले नहीं नहीं अभी कोई नहीं है, काफ़ी अच्छी हो रही है, दोबारा बांध देते हैं। दोबारा बांध दिया, फिर बोले 15 दिन बाद में फिर आना। 15 दिन बाद में फिर जब वो अहमदाबाद गए, पट्टी खोली और डॉक्टर ने पूछा उस बच्चे से, बच्चा सिर्फ 3री क्लास का था, बोले कुछ दिखता है, ये कितनी उंगलियाँ हैं, बोलता है धुंधला धुंधला दिखता है लेकिन ये 2 हैं। बोले ये कितनी हैं, बोले 4 हैं। और वो बच्चा आज के दिन 30 साल का है, नौकरी कर रहा है और दोनों आंखों से उसको दिखाई दे रहा है, जो कि एक सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता लेकिन ये बता रहा हूँ
कि महासमाधि ली है तो भगवान के शरीर ने ली है, आत्मा ने नहीं ली है। आत्मा अभी भी जीवित है, पूजनीय है, और आज भी वही शक्ति है जो देहधारी

0: अलकपुरी जी महादेव की। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामान्य स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

की आराधी भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय।

0: देव पुरुष महादेव
1: जय।
0: ओम शांति
2: विश्व गुरु महामंडलेश्वर का हर स्वामी महेश्वर नाम को जय गुरुदेव।